मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्राणवत नानक तिन।

रंग पयो राव कही फूपा अंडज जेर जसे तजकीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर अकैठा।

चतुरात तत्कालम कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर मैं कर मोह सब होई दुष्ट शाह स्व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई

संबत 17 सहस्र निज्जा अर्ध सहस्र फुन 3 की हिज्जा पादरव सुदी अष्टमी रव 12 तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रो पख्याने त्रया चरित्र मंत्री भूप संबादे 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजून दोहरा दास जान कर दास पर कीजै कृपा अपार आप हाथ दै राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपई मैं नग्न सह प्रथम नाऊं किसन बिसन कब हूँ।

सब काज तुम हो, सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करहु मुहे, हार परा मैं आन द्वार तुहे। तो

चूक होए कब लेहो सुधारो। कबियो बाचिब दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा, सो कहो जग माहे जो तह प्रभ को त्याय है अंत सुर्ग को जाहे। दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे, जलते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखै समाहे। दोहरा जब आए प्रभु को पयो जन्म तरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए। कब बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पाव है गे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह मो कोट के बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सास क्रोर जलेस। दोहरा

सूरत में अल्लाह पनवारे चौकी चौकी हमारे राम नाम जी तुम मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन मन पूर्ण दुख बिधाता रहा नानक प्रभ विनासी ताकि से नगर की जासी आनंद करे तेरे दासा जब पूर्ण हुई आशा बिलाव मोहल्ला पंजवा भक्ति माना लगे पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सत गुर पूरा भेटिया जिन बढ़त बनाए राम नाम अखर भी आए काली बुलाई रहाओ राख लिए दिन रखन हार सब याद मिटाए कहो नानक कृपा भई कर भय सहाय श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत बना होना तुण छट है निकट न जाई हदूत शोक महला पंजवा मन में चितो चितवनी उदम क्रोठ नीत हर कीर्तन काया हो हर देहु नानक के मीत सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय घर कीरत आखी है करते का हुए बिचारो तित घर गावो सोहिला सिवर सृजन हारो तुम गावो मेरे निरपौ का सोहिला हो वारी जित सोहिला सदा सुख हो रहाओ

हर चरण कमल मकर लोभित मनो अनदिनो मोहे आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को जाते तेरे नाम आसा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

ये हैं जीत हैं पीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं सर्ग हैं अनिल हैं नाद हैं जे हैं जाद हैं जन्म हैं वर्ण हैं पूत हैं पर्ण हैं अगंज हैं पंज हैं चूज हैं चंज हैं मीक हैं रफीक हैं तंद हैं बंध हैं निर्भूज हैं सूज हैं अकाल हैं अजाल हैं लाह हैं जाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरश्रीक हैं निरलंब हैं संभ हैं गम हैं जम हैं पूत हैं छूत हैं अलोक हैं शोक हैं कर्म हैं परम हैं जीत हैं पीत हैं बाह हैं गाह हैं अमान हैं निदान हैं नेक हैं फिर एक हैं पोजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे पेखिय पेहवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे नंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राजराजे स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राजराजे स्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह नमो कूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्त स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता दो उर्द अर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्तस्तो तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं पोजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोक सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चर्प्रचंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं लख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद प्रसाद आदरूपानाद मूरत जोन पुरखा पार सर्वमान त्रिमान देव पिहवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्तर तत्तर विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जा कर रूप रंग न रेख आदि पुरख उदार मूरत जोन आद सेख देश और न पेश जा कर रूप रेख न राग जत्तर तत्तर दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेख तम हूं नह जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा हेक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिरेक
देव भेव न जन ही जेह बेद और कते बारूप रंग न जात पास जन ही केह जे बतात्मात न जात जा कर जन मरण विहीन चक्कर बकर फिरा चतर चक मन ई पुरतीन लोक चौ दह के बेखा जग जाप ही जेह जाप वाद देवनाद मूर्त थाप्यो सब जेह थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्ब बेसव रचयो सुन्याम भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संजुगत काल पुरख अदेस धर्म धाम सो परम रहत भूतल अख भेस अंग राग न रंग जाक है जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आदि रूप असूत अंगहीन भंग अनात्म एक पुरख पार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्वशास्त्र न जन ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाक नेत भक्त नित कोट सिमरित पुराण शास्त्र नाव ही बह चित मद भार छंद प्रसाद गुण गण उदार महिमा पारासन भंग उपमा नांगन पौ प्रकाश निस्दिन नास आजान बाह साहान साह राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंग कालान कालान पूरांगा बा पंग अस्मित पार गुणगन उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गता खंडा लिस्सा कर्मा दृश्य धर्म सर्वा प्रणाडन दंड बाडा चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पोजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र भरती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र पकाले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्रा न मित्रा न परमंग न पित्रा न कर्मंग न काये जन्मंग अजाय न चित्रा न मित्रा परे है पवित्रा प्रतीस दिश दृश कृस भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आ छज देसा के आ पैज पेसा के आ गंज कर्मा के आ पंज परमा के आ पैज लोका के आ दित सोका के अवधूत परना के विभूत करना के राजंग प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा पर्ण है के जगतं कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद देव है के आप भेव है के चित्रंग विहीन है के कैदीन है के रोजी रजाक है रहीम रिहाक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफोल गुनाह हैं के साहा नसाह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या के सर्वत्र गौना है के सर्वत्र पौना है के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र त्राणा के सर्वत्र प्राणा के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मान्या सदैव प्रदान्या के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पाना के सर्वत्र माना के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्रा के सर्वंग कलीमा के परमंग थीमा के आकल लामा के साहिब कलामा के हुसनुल वजू हैं तमामल रुजू हैं हमेशल सलामा सलीखुत मुदामा गनीमुल सकस्ता गरीबुल प्रस्ता बिलंदुल मकाना जमीनुल जमाना तमीजुल तमामा रुजूल निदाना हरी फुल जीमा रजायक यकीना नेकुल तरंग हैं भेद हैं पंग हैं
अजीजुल निवाज हैं, गनी मुल्क खिराज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त बेपूत हैं, त्रिपुगत प्रभा हैं, सुजुगत सुधा हैं, सदैवं स्वरूप हैं, भेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैवल अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओ अंग आद रूप है, नाद स्वरूप है, नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्ग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप हैं, छज हैं, छूत हैं, के नरकं प्रणास हैं, पृथ्वीउल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, बेपुगत स्वरूप हैं, प्रजुगत अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, बेपुगत प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रजुगत अनूप हैं, चाचरी छंद अपंग हैं, नंग हैं, भेख हैं, लेख हैं, परम हैं, कर्म हैं, नाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, वै हैं, पूत हैं, तूत हैं, नास हैं, उदास हैं, तंद हैं, बंद हैं, भक्त हैं, विरक्त हैं, नास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, लिख हैं, दिख हैं, लेख हैं, पेख हैं, टाह हैं, गाह हैं, असंभ हैं, गंभ हैं, नील हैं, नाद हैं, नित हैं, सुनित हैं, जात हैं, अजाद हैं, चर प्रचंद प्रसाद सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंत्राणं सर्वंकर्मं सर्वंतर्मं सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता रसावल छंद त्वप्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्रीक हैं मितो मीक हैं सदैवं प्रभा हैं जय हैं जा हैं भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसन अल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसन अल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीब उल निवाज हैं हरीफुल सिकान हैं हिरासुल फेकान हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजल गनीम हैं रजाय करहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं केसरबुल गवन हैं मेसुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परमेश हैं समस्तुल अधीश हैं देसुल लेख हैं मेसुल पेख हैं जमीनुल जमा हैं मीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरत जमाल हैं के अतुलंग प्रकाश हैं के मित्तो सुबास हैं के अजब स्वरूप

संबत 17 सहस 50 सहस 15 कहिजै भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधा

न मान्यो। सिमरित शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असिपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार

हम दिता हम चलाया हम छटया हम चगाया हम सच्यार कूड़ियार हम च पापन विचार हम च नर सुरग अवतार हम बिच हसे हम बिच रोवे हम च भरिया हम बिच होवे हम बिच जाति जिनसी खोवे हम च मूर्ख हम सियाणा मुख मुक्त किसार न जाना हम च माया हम छाया।

मेल सतसंगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा तार मधुसूदना मेल सतसंगो महाराम हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा गुण गावै गुण बोलै बाणी हर गुण जप महाराम सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम न पुजै पुजाहा हर हर तुल तोला तपारी गुरमत जप महाराम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किलविख मैल पाप तोवाहा दीन दयाल हो जन उपर देहो नानक नाम ओ महाराम जैत श्री महला पंजवा कर तीजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद कोई जानै कमनीह जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकि निर्मल रीत रहाओ मात पिता बनता सुत बंध पौ इष्ट मीत अर पाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंतह को न सहाय मुकत माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया हा हा करत बिहानी अवदह तामह संतोख न पाया हस्त रथ असव पवन तेज तनी भूमन चतुरांगा संग न चाल्यो इन मह कछुआ उठ सदायो नांगा

हत संगिया सा मनसा सगल पूरी प्रियांकांक मिलाई। बिनवंत नानक सुख सुखेदी सा मैं गुर मिल पाई। जैत श्री महला पंजवा कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक। ऊचागमा पार प्रभ कथन जाय कथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ छंत। जो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गण असंख्य अवगुण मेरिया संख्य अवगुण खते फेरे नित प्रत सद भूली है। मोह मगन बेकराल माया तो प्रसादी भूली है। लोक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया। बिनवंत नानक दया धार हो काढ़ पवजल फेरिया सलोक। निरत न पवै असंख गुणा ऊचा प्रभ का नाव। नानक की बेनंतिया मिलन थावे थाओ छंत। दूसर नाही ठाओ का पह जाइया आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना मन है चिंदिया पाई है। तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिबलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगा आप सगल मिटाई है। बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है।

सात चंत साथीड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल महियर पूर रहया सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी भज सरन स्वामी सुखा गामी तैस बिनान नाहे कोए बिनवंत नानक दया धार हो तिस प्राप्त नाम हो इस लोक चित जे चित व्यास हो मैं पाया नानक नाम ते आए सुख सबाया शंत अब मन छूट गया शंत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर मिलाए जन्म मरना दुख जले।

तुम कहियत हौ जगत गुर स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। जात देखो तत दुख की राशी, अज हो न पत्याए निगम पए साखी। गौतम नार उमापत स्वामी, शीस तरन सहस पगगामी। शीस तरन सहस पगगामी, इन दूतन खल बद कर मारियो। बड़ो निलाज अजहू नहीं हारियो, कहर विदास कहा कैसे कीजै। बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। एक वो अंकार सतनाम करता पुरख, निरपहो निर्वैर अकाल मूरत। जूनी सह पंगुर प्रसाद राग टोडी महला चौथा कर पहला। हर बिन रह न सकै मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुर मेले। बहर न पवजल फेरा रहाउ, मेरा ही अरै लोच लगी प्रभ केरी। हर नैन हो हर प्रभ हेरा, सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया। हर पादर हर प्रभ केरा, हर रंगी हर नाम प्रभ पाया। हर गोविंद हर प्रभ केरा, हर हिरदा मन तन मीठा लागा। मुख मस्तक भाग चंगेरा, लोभ विकार जिना मन लागा। हर विसरिया पुरख चंगेरा, ओए मनमुख मूड अज्ञानी कही है। तिन मस्तक भाग मंदेरा, विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई। गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया। तुरमस्तक भाग लिखेरा, टोडी महला पंजवा कर पहला। दुप देख ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

सोई प्रभ नानक सो ठाकुर तिस ही को तीन। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जपे ही राम नाम निर्मल हरी तराव। प्राण आधार जीवन तहन मोरा, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट घाट तोसा संग मोरा, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मला, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमख ही अरे ते, अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोब हो भरम राख मेरे प्रीत मान, तरजामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरा, अमृत दृष्टा धार हो प्रभ मान। आठ पहर रसना गुन गावा, जास पूरा गावह समरथ कान। तेरी शरण जीयन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन। कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दह दस दह दिस रव रहया, जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावे करते, से जन कबहो न मरते चूर। तंद बंद बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग ऐस जी के, बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्यास, एक खिन रह न सको बिन प्रीत मान। दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ। सिमरो नाम निरंजन करते, मन तन ते सब किल विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते, अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, कर कृपा पेटे गुणतास। शांत सहज सूख मन उपजेओ, कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन, जी प्राण मान सुख दाता। अंतर जामी मन को पावना रहाओ। सुंदर सुगड़ चतुर सब बेतार, रिद दास निवास भक्त गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी, कर्म भूम बीजन सो खावन। बिसम बिसम बिसमन बिसम भय बिसमादान, नबियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा, नानक दास सदा बल जावन। टोडी महला पंजवा माई माया छल, त्रिण की अगन मेघ की छाया। गोबिंद भजन बिना हड़का जल रहाओ। छोड़ सियानप बहु चतुराई, दोए कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी, मानुख देह का एहो उत्तम फल। वेद बखियान करत साधु जान, भागहीन समझत नहीं खाल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हर सिमरन दहन पए माल। टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे, वड्डा भाग देवा परमेश्वर। कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ। गुण गावत चौथा बिनासी, काम क्रोध बिन से मद ठीठे। अस्त्र पय साच रंग राते, जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक, नाम बेहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद होवै दिन राती। अंकुर पलो हमारा रहाओ। गुर पूरा पेट्यो बड भागी, जाको अंत ना पारा वारा। कर गया है काढ लियो जने अपना, बिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी, बाहुड़ ना संकट द्वारा।
ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸਾ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਪਹੀ ਆਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਭੁੱਖ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸਿੱਧ ਕਾਮ ਧੇਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁੱਖ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਾ ਧੁੱਖ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਉ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁੱਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਪਾਰੇ ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਝਾਰੇ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੋ ਕਹਾ ਆਪਣੀ ਅਦ ਮਾਈ ਉਰਜਿਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹਿ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਾਈ ਰਹਾਉ ਜਗ ਝੂਠੇ ਕਉ ਸਾਚ ਜਾਨਕੈ ਤਾਸਿਓਰ ਚੁਪ ਜਾਈ ਦੀਨ ਬੰਧ ਸਿਮਰਿਓ ਨਹੀਂ ਕਬਹੂ ਹੋਤ ਜੋ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਮਗਨ ਭਇਓ ਮਗਨ ਰਹਿਓ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਨ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅੰਤ ਗਾਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਟੋਡੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਨਿਰਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਦੂਰ ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰਾ ਖਜੂਰ ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨਾ ਛਪਾਇਓ ਰਹਾਉ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਕਾ ਬੇਦ ਬਖਾਨਾ ਮੂਰਖ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਾਮ ਹਜਾਨਾ ਕੌਣ ਕੋ ਕੁਲੰਕ ਰਹਿਓ ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ

गोबिंद आशा गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आशा राम श्याम गोबिंद गो राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन कथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पाव है भज गुरमत हर राम राम रहाउ नाना ख्यान पुराण जस उतम खट दर्शन गाव है राम शंकर करोड़ तेतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम स्वर नर गण गंधरब जस गाव है सब गावत जे तो पाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान दिवायो रहाओ तेस जन कौ मन तन सब देवाओ जिन हर हर नाम सुनायो धन माया संपा तिस देवाओ जिन हर मीत मिलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशरा तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर भेटे स्वामी दुख हमें रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै रहाउ जो किछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावै हर आपे ही मत देवै स्वामी हर आपे बोल बुलावै हर आपे पंच तत् बिसथारा विच धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगर चुकावै बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कोट अंतर के पाप सब खोवै हर भव जल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बस्त काश नदर नावै हर लादा गुर विचारा हर आपे साहो सराफ रतन हीरा हर आप किया पास सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम बेहाजे सो साहो सच्चा वणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याई है सुखदाता जा का अंत ना पारा वारा रहाओ अग्न कुंट मह उर्द लिव लागा हर राखा उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे माना हर अंत छडामन हारा जा का हृदय बसया मेरा हर हर तिस जन कौ करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाईऐ हर जप नानक नाम धारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छा है सोई फल पाव है फिर दुख न लागे आए रहाओ सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर सिव प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मह बिसर सब जाए तू बेअंत सर्ब कल पूरा केश कीमत कही न जाए नानक सरन तुम्हारी हर जियो पावै तिवै छडाए राग बैराड़ी महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो राव जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवायो सर्ब सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई राग तिलंग महला पहला कर पहला।

कहो नानक प्रभ लोचा पूरा, संत जना की बाछो तूर। तिलंग महला पंजवा कर तीजा, मेहरवान साहिब मेहरवान, साहिब मेरा मेहरवान। जी सगल कौ दे दान रहाओ, तू काहे डोला है प्राणी आ, तू द्राख है गा सिरजनहार।

ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कते बेफतरा भाई दिल का फिकर न जाए टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाए बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे एहो जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी नाहे रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूर्त नाहे असमान म्याने लहंग दरिया गुसल कर दन बूद कर फकर दायम लाए चश्मे जह तह मौजूद अल्लाह पाकं पाक है सक करो जे

प्रावदाता मोय दीन पिखारी, तुम सदा सदा उपकारे, सो किश नाही जे मैं ते होवै, मेरे ठाकर अगम पारे, क्या सेव कमाऊ क्या कैरी जाऊं, बिद कित पाऊं दरसारे, मितनी पाई अंतरन लहिए मन तरसे चरनारे, पाऊं दान ठीठ होए मांगू, मुख लागे संत रे नारे, जन नानक गुर कृपा तारी, प्रभ हाथ दे निस्तारे, राग सुई महला पंजवा करती जाए, कौन कर सतगुर प्रसाद, सेवा थोरी मांगन बहुता, मैल न पावे कह तो पहुता, जो प्रमाने तिसकी रीसा, तिन की रीसा, कूड़े मूरख की हाठी सराहो, भेख दिखावे सच ना कमावे, कह तो मैली निक न आवे, अतीत सदाए माया का माता, मानी प्रीत कह मुगरा तक, ओ नानक प्रभु नु सुनीजै, कुचल कठोर कामी मुक्त कीजै, दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुखदाते पुरख सुभा।

तेरे चरण को बिलहारा राग सुई महला पंजवा कर सतमा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तेरा भाणा है तू मनाए जिसनु हो दयाला साई भगत जो तुत पावे तू सर्व दियां प्रतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारे जो तुत पावे सो प्रमाण मन तन तू है आधारी रहा तू दयाल कृपाल कृपा निध मन सा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण प्रत पीतम तू भक्तन का प्यारा तू अथाह अपार अत ऊंचा कोई अब न तेरी पाते एड़दा स्वा हमारी स्वामी विसरना सुखदाते देने नैन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावे सुई महला पंजवा विसरे नाही जितो कबहू सो थान तेरा केहा आठ पैर जितो त्याई निर्मल होवे देहा मेरे राम हो सो थान पालन आया खोजत खोए पैसा संगत सरनाई पा रहा हो बेद पड़े पड़ बर में हर एक तिलनी कीमत पाई सदक सिद्ध सगल फिर बुलाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वरतै महादेव अदूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेभूता सहज सुख आनंद नाम रस असंति मंदल गाया सफल दर्शन पेठे गुरु नानक ता मन तर हर हर त्याया सुई महला पंजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जगाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावहो करते का निमख सिमरत जित छूटै संतो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए रहो कोट तीर्थ मजन इशनना इसमें कल मैं मैल परी जैसा संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद तेव सिमरत सब साफ इन पड़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश वर्णा को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं कट नानक माजा सुई महला पंजा जोक्ष करे सुई प्रमाने ओ राम नाम रंगराते तिन की शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संता जीवड़ना कोई भक्ता बन आई प्रभ अपने सो जल थल मजल सोई राहो कोट परादी संत संग उदरै जन्म का नीड़ न जमता का नीड़ न आवे जन्म जन्म का विछड़िया होवे तिन हर स्यो आण मिलावे माया मोह भरम पो काटे संसरण जो आवे ज्या मनोरथ कर अरादे सो संतन ते पावे जन की महिमा केत कबरनो सो प्रभ अपने भाणे कहो नानक जिन सतगुरु पेटिया ते सब ते पै निकाणे सोई महला पंजवा महा अगन ते तुधा दे राखे पै तेरी सरणाई तेरा मान तान अंतर होर दूजी आस चुकाई मेरे राम राय तुद चित आए उबरे तेरी टेक परवासा तुम राजा पर नाम तुम्हारा उदरे राहो अंधकूप ते काल लिए तुम आप कृपाला सार संभाल सर्व सुखी आप करे प्रतपाला अपने नर करे परमेश्वर बंधन काट छाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए भरम गया भै मोह बिनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुखदाते भेटिया सतगुरु पूरा सुई महला पंजवा जब कश ना सीओ तब क्या कहता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर दे कैठा कर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कश न हो आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई राहो गणती गणे न छूटे कतूं काची दे इयानी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्शनाली जी सा तेरे की ते घट घट तू ही त्याई है तेरी गत में तू है जाने कुदरत कीम न पाई है निर्गुण मुक्त अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नान गुण गावे मिठा लगा तेरा भाण सुई महला पंजवा भाग ठड़िया संत तुम्हारे जिन घर तन हर नामा प्रवाण गणी सही आए सब तिना के कामा मेरे राम हर जन कह हों बल जाई केसा का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुख लाई रहो जन मरण दो मैं नाही जन परपकारी आए जी दान दे भक्ति लाए नरसन लैन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पासाई सच्चे सेती रहते सच्चा सुख सच्ची उड़ियाई जिसकी सित न जाते पक्खा फेरी पानी ढोवा हर जन कह पीसन पीस कमावा नानक की प्रभ पास बेनंती तेरे जन देखन पावा सुई महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करना हारा चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलहारा मेरे राम राय ज्यों राख त्यों रहे तुद भावै ता नाम जपावै
सुख तेरा जिता लिया रहो मुक्त भुगत जुग तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जा कीर्तन तेरा तू आपेसर दा लाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निआला चरण कमल तेरे धोते पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सोई जित तुम रह द्वारे आया नानको प्रभाए कृपाला सतगुरु पूरा पाया सोई महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल हो जिस ऊपर करते सो तू सदा

चरण तूर तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन को बल जाए। अमृत बचन हृदय उरतारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुद पैसारी, तुद जेवड़े अब न कोई। जिसनु लाए ले सो लागे भगत तुहारा, सोई दो कर जोड़। मांगू एक दाना साहेब तुठे पावा, सा सा स्नान करा दे आठ पहर गुण गावा। सोई महला पंजवा, जिसके सिर ऊपर

कोई सतगुरु का दिलासा। नाम त्यान सुख फल पाने आठ पैर अराधे तेरी शरण तेरे प्रवास है पंच दुष्टले साधे। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी सुई महला पंजवा सगल त्यागुर सरणी आया राखो रखनहारे। जित तू लावे तित हम लागे क्या है जंत विचारे मेरे राम जी तू प्रभम त्रजामी कार कृपा गुरदेव दयाला गुण गावन स्वामी राव आठ पैर प्रभम न त्याई है गुर प्रसाद तो भव तरी है आप त्याग हो ये सब रहना जीवत्या उम्री है सफल जन्म तिसका संग पीतर सासंग नाउ जापे सगल मनोर तिनके तिसके पूर्ण जिस दया करे प्रव्यापे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सादर वाला। राग सोई अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब आव

नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता चितने आवे फिर फिर लगे दुख जियो, सुख दुख दाता मन वसे, तित तन कैसी भुख जियो, बाकी वाला तलबिया सिर मारे जमदार जियो, लेखा मंगे देवना पुष्करे बिचार जियो, सच्चे की ले उबरे बख्शे बख्शन हार जियो, अन को की जय मित्रा खाक रले मर जाए जियो, बहु रंग देख पुला आया पुल पुलावे जायो, ना जाए जियो, नदर प्रभु ते छूटी है नदरी मेल मिलाए जियो, गाफल ज्ञान में हुनिया गुरबन ज्ञान न पहल जियो, खिंचो तान भी गुचिया बुरा पला दो नाल जियो, बिन शब्द पैरत्या सब जो ही जमकाल जियो, जिन कर कारण धारिया सबसे दे आधार जियो, सुख मनो सारी है सदा सदा दार जियो, नानक नाम ना विसरै निधारा आधार जियो, सुई महला पहला काफी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होय चलम जे सतगुरु पाया, चलै जन्म सवार वखर सच लै, पत पाए दरबार सतगुर शब्द फहरा, मन तन सच सलाहे साचे मन मानिया, लाल रता मन मानिया गुरु पूरा पाया, हो जीवा गुणसार अंतर तू सै, तू सै मन माए सहजे रस रसै, मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीत में अपना, जे चले गुण नाल ना ही दुख संता अपना, मन भरम भुलाना नाथ रंग है, मरमी होए वडाणा मन तन भंग है, गुर की कार कमा हे लाहा कर आणिया, गुरबाणी निर्माण शब्द पछाणिया, एक नानकी अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी, सुई महला पहला जो आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है, त्यों सागर जो नी पाए भवै पवाई है, बिन बूझै सब दुख दुख कमावना, होमे जाए होमे आवे जाए भरम भुलावण राहो, तू गुरमुख रखण हार हर नाम त्याई है, मिले तुझे रजाए शब्द कमाई है, तू कर कर वेखे आप दे सुपाई है, तू देखे थाप थाप दर भी नाई है, देही हो खाक पौनू डाई है, ए किथे करो ताक मैल न पाई है, दियो दीवी अंध कोर कब मोहाई है, करब मुसै कर चोर किसरो आई है, गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग ज्योति पाई है, लाल रतन नाम गुरु सुरत बुझाई है, सदा निकाम जे गुरमुख पाई है, रात दे हर नाम मन वसाई है, नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है, सुई महला पहला मनो नाम विसार एनस त्याई है,

प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख विगह दूर अंतर पी तू है, मैं दिसे नाम निवास अंतर शांत होए। गुण गावे नानक दा सतगुर मत दे राग, सोई महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नामे ही ते सब किश हुआ, बिन सतगुर नाम ना जापै। गुर का शब्द मारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापै। कौडी बदले जन्म गवाया, चीन सनाही आपै। गुरमुख होवे तां एको जाने, हो मैं दुख ना संतापै। बलहारी गुरे अपने मिटो, जिन साचे सिंले बलाई। शब्द चीन आत्म प्रगासै, सहज रहै समाई रहो। गुरमुख गावै गुरमुख बूजै, गुरमुख शब्द बिचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजै, गुरमुख कार्ज सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावै, बिन खट्टे संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुरत प्यारे। सोई सेवक जो सतगुर सेवे चाले, सतगुरु पाए। सच्चा शब्द शिव तै साची, सच्चा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखै, हो मैं विचों जाए। आपे दाता कर मैं साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख पाले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुरु कैसे सुपाए। मानमुख साधी कूड़ो बोलै, बिख बीजे बिखाए। जम काल बाधा तृष्णा दादा, बिन गुर कवण छडाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर रावण, गुरमुख अपन खाए। अर सर तीरी गुर शब्द दिखाए, तित नहातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सो सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किश हर तस्केरा, दुरमत कह न जाए। करम होवे तां निर्मल होवे, हुमे विचों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अगम जाए। गुर कै शब्द राता, सहजे माता सहजे रह समाए। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै पाए प्यारे। सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे। एको सच्चा समय वरता, बेला को विचारे। आपे लए मेल लए, तां बख्शे साची भगत सवारे। सबो सच सच सच वरतै, गुरमुख कोई जाने। जमण मरणा हुक्म वरतै, गुरमुख कै पछाणै। नाम त्याए तां सतगुरु पाए, जो छे सोपल पाए। नानक तिस

साचे पिर जोड़ी प्रीतम लोभ साजे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रदाने संजोगी मेला था सुवेला गुणवंती गुरु ज्ञाने सा संतोख सदा पल्ले सच बोले पिर पाए नानक विचरना दुख पाए गुरमति अंक समाए राग सुई महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अंदर पेल पया मन मानिया कर मंदर सुहाए पंच शब्द तुना नंद वाजे हम कर साजने आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभाव सोहरड़ा जुग चारे अपने कर आया थान सोया कार सब सवारे ज्ञान महा रस नेत्री अंजन त्रिवण दिखाया सखी मिधो रस मंगल गाव हम कर साजने आया मंतन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत भेक तू सबले जाता सिर सर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना सुनो सखी मन मोहन मोहया मन तन मन अंतर पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम पारा तुझ रहन न बुझाए सिद्ध साधिक स्याणे केते तुझ रहन कह न जाए कहन कहाए काल विकाल पे देवाने मन राख्या गुरु ठाए नानक गुण सब जलाए गुण संजम प्रभ पाए राग सुई महला पहला करती जाए कुंकर सतगुरु प्रसाद

मन चाउकन हेरा राम, मन चाउकन हेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा। दर्शन देख पई नेह केवल, जन्म मरण दुख नासा, सगली जोत जाता तू सोई मिले भाई सुभाए, नानक साजन को बुलवाइए साच मिले कर आए। कर आप नड़े साजना ता तन खरी सरसी राम, हर मोहड़ी साच शब्द ठाकर देख सर रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंगरात है, अवगुण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख विदात है। तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे, नानक नाम नाम निस्तारा गुरमुख मिले प्यारे। बस पायड़ा बालड़िए आसा मुंसी पूरी राम, तेरे रावेड़ा शब्द रली रव रह नहीं दूरी राम। प्रभ दूर न होई कटकट सोई, तिसकी नार सभाई आपे रसिए आपे रावे ज्यों तिसदी वड्याई। अमर अडोल अमोल पारा गुरपुरे सच पाई, नानक आखे जोग जगो संजोगी नदर करे लिवलाई। पेर उचड़िए माड़िए तेह लोहा सिरता जा राम, हाँ बिसम पई देख गुणा आहनद शब्द गाजा राम। शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन प्रमाण। पात मत पूरी पूरा प्रवाना, ना आवे न जासी नान गुरमुख आप पछाणे प्रभ। से जय से अविनाशी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राख सोई संत महला पहला कर चौथा। जिन किया तिन देखिया जग धंधड़े लाया, दान तेरे कट चानना तन चंद दी पाया, चंद दी पाया दान हर कै दुखों दौरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नार सोया परख मोहनिया, लया विया हुआ सोख सीती पंच शब्दी आया। जिन किया तिन देखिया जग धंधड़े लाया, हों बलहारी साजना मीता वरीता। ए तन जिन स्यों काढ़िया मन लीड़ा दीता, लिया तां दिया मान जिन के स्यों से सजन क्यों विसरै। जिन निस दिस

भजल पार उतारा। आद जुगाद भक्तन का राखा उसत कर कर जीवा, नानक नामा रस मीठा अनदिन मन तन पीवा। हर आपे ले मिलाए क्यों वे छोड़ा, थी वही बलराम जियो जिसनों तेरी टेक, सो सदा सदा थी वही बलराम जियो तेरी टेक। तू जय दे पाए सचे सृजन हारा, जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संजना बिर मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलहारी। संभलिया सच थान मान मैत सच पाया, बलराम जियो सतगुरु मिलिया दयाल गुर अवनासी गाया। बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया। शुभ दिस आए गए कंठलाए मिले अंतर जामिया, सत संतोख वजै वाजे अनदा चुनकारे। सुन भै बिना से सगल नानक प्रापुरख करण हारे, उपजे तत ज्ञान सोहरे पेई एक हर। बलराम जियो ब्रह्मे ब्रह्म मिलिया कोई ना, साके पिन कर बलराम जियो। बिस्म पेखे बिस्म सुनिए बिस्माद नदरी आया, जल थल मेल पूर्ण स्वामी कटक रहा समाया। जिसते व्यर्थ समाय समाया कीमत कह न जाए, जिसते चलत न जाए लखणे नानक से ते आए। राग सोई संत महला पंजवा घर दूजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गोविंद गुण गावन लागे हर रंग अनदिन जागे, हर रंग जागे पाप पागे मिले संत प्यारिया। गुर चरण लागे परम पागे काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागे। बिनवंत नानक शरण स्वामी जी अपने प्रभ आगे, अनत शब्द सुहावे सच मंगल हर जस गावा। गुण गाए हर हर दुख नासे रैस उपजे मन कणा, मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख पणा। होय रेण साधु प्रभ अराधु अपने प्रभ भावा, बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा। गुरमन सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया, हर चरण त्याय सफल पाए मिटे आवन जाना। पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभावा, जप एक अलक अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर भरम खोया, जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा। पूर्ण संजना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याय, सगल इच्छा पुनिया। ਹਉਂ ਤਾਪ ਬਿਨ ਸੇ ਸਦਾ ਸਰਸੇ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨਿਆ। ਮਨ ਸਾਂਤ ਆਈ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਮਨੋ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆ ਸਦਾ ਭਜ ਜਗਦੀਸਰੈ। ਰਾਗ ਸੋਈ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਤੀ ਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਰੜਦਾਣਾ ਕਰ ਰਿਮਤ ਸਾਈ, ਕਰ ਮਿਹਰ ਮਤ ਸਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈਸਾ ਮਤ ਦੀ ਜੈ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਧਿਆਈ। ਗਰਭ ਨਾ ਕੀ ਜੈ ਰੋਣ ਰੇਣ ਹੋਵੀ ਜੈ ਜਾ, ਤਾਂਗਤ ਜੀਆ ਰਹਿ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕਾ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਤੁਮ ਗੌਰ ਅਤ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਤੁਮ ਫਿਰ ਹਮ ਬੋਹਰੀਆ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੜ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਇਤਨ ਕਲਾਹੁਰੀਆ ਰਾਮ। ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਤੂੰ ਐ ਆਪੇ ਆਪ ਸਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾਂ, ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਨਾ। ਚਰਣਿਆ ਸਰਣੀ ਦਾਸਾਂ ਦਾਸੀ ਮਨ, ਮੌਲੈ ਤਨ ਹਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਸਰ ਸਮਾਣਾ, ਆਪਣ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ। ਤੁਝ ਉਪਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਰਾਮ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤਰਾਈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਜਾਣਾ ਰਾਮ। ਸੋਈ ਜਾਣਿਆ ਸੋਈ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਸਿਰੰਦੇ। ਮਨ ਭੁੱਲੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ, ਫਾਤੀ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ। ठाकर पानी सागुणवंते, तेनी सब रंग माणा। नानक कीता तू है ठाकर,

मन धन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभु घर में आया रहाओ भगत वछल पै काटन हारे संसार सागरिया उतरे भारे अतत पावन प्राबृत वे लेखिया पाप रहसो नैनो देखिया साध संग प्रगटे नारायण नानदास साधु पलान बुलाण मला पंजवा कौन जाने प्राप्त मरी सेवा प्रभ नासिया लक पेव्या गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे तू परम पठाकन मेरे रहाओ इक्स बिन ना एक दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा।

खोजत खोजत बह प्रकारे सर्ब अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाईऐ माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी वडहंस महला पहला राग वडहंस महला पहला कर

छुट्टी मुठी झूठ विदनिया मृत कड़ा अंगनड़े बारे सुरत मोई मर माइए महल रुनी दर बारे रोवो कंत मेहली हो सच्चे के गुण सारे जल मल जानी ना वालिया कपड़ पटम बारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मोए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण पया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरा सो जानी है पिर सचड़ा हेत प्यारे तुसी रोब हो रोमन आई हो झूठ मुठी संसारे हो मुठड़ी धंधा धामणी आ पिर छोड़ियाड़ी विदन कारे कर कर कंत मेहलिया रूड़ा हेत प्यारे मैं पिर सच सलाहना हो रहस्यड़ी नाम पतारे गुर मिलिया वेस पलटिया सा धन सच सीगारो आवहो मिलहो सहेली हो सिमरहो सिरजनहारो बैयर नाम सुहागणी सच सवारन हारो गावहो गीत न बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वड हंस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर न पाली है घट घट शब्द पछाण हो वा सच शब्द पछाण हो दूर न जान हो जिन हे रचना राची नाम त्याए ता सुख पाए बिन आवै पिड़ काची जिन थापी बिद जाण सोई क्या को कह बखाणो जिन जग दा थाप बताया जालो सो साहिब परवाणो बाबा आया है उठ चलना आद पंदा है संसारो वा सिर सिर सचड़ा लिखिया दुख सुख पुरब विचारो वा दुख सुख दिया जे हकिया सो निबह जी नाले जे हे कर्म कराए करता दूजी कार ना भाले आप निरालम तंदा बाधी कर हुक्म छड़ावन हारो अज कल कर दिया काल ब्यापा दूजे पाए वेकारो जम मार्ग पंथ न सुजई उजड़ अंध गुबारो वा ना जल लेप तुलाई आ ना भोजन प्रकारो वा भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सीगारो गल संगल सिर मारे उबो ना दिसै कर बारो एब के राहे जमन नाही पछताने सिर पारो बिन साचे को बेली नाही साचा एहो बिचारो बाबा रोवह रवह सो जानी है मिल रोवै गुण सारे वा रोवै माया मुठड़ी धंधड़ा रोमन हारे वा धंधा रोवै मैल न धोवै सुपनंतर संसारो जो बाजी गर पर मैं भूला झूठ मुठी अहंकारो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए नाम रते गुर पूरा राखे नानक सहज सुभाए वड हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसारो वा सच्चा घर सचड़ा सेवी है सच खरा सचियारो वा कूड़ लभ जान थाए न पासी अगै लह न ठाओ अंतराओ न बैसो कहिया जो सुन करकाओ जमन मरन वड्डा वेछोड़ा बिन सह जग सबाए लभ धंदा माया जग भुलाया काल खड़ा रू आए बाबा आव हो पाई हो गल मिल है मिल मिल देह आसी साहे बाबा सचड़ा मेल न चुकाई प्रीतम किया देह आसी साहे आसीसा देव हो भक्त करेव हो मिलिया का क्या मेलो एक भूले नाव थे हो थाव हो गुर शब्दी सच खेलो जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाणा जुग जुग साचा वेसे साजन सैन मिलहो संजोगी गुरमिल खोले फासे बाबा नांगड़ा आया जग मह दुख सुख लेख लिखाया लिखियाड़ा साहा ना टला जेहड़ा पुरब कमाया बह साचा लिखिया अमृत बेखिया जित लाया तित लागा कामण यारी कामण पाए बहुरंगी गल तागा होशी मत पया मन होछा गुड़ सा मक्खी खाया ना मरजाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया बाबा रोव हो जे किसै रोवना जानी अड़ा बंद पठाया है लिखियाड़ा लेख ना मिटिया दर हाकारड़ा आया है हाकारा आया जात सपाया रुने रोवन हारे पुत भाई पाती जे रोवह प्रीतम अत प्यारे भैरो वै गुण सार समाले को मरा न मोया नाले
ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣ ਸਜਾਣਾ ਰੋਵੈ ਸੱਚ ਸਮਾਲੇ ਭੈ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਰ ਸਮਾਲੇ ਕੋ ਮਰੈ ਨ ਮੋਇਆ ਨਾਲੇ ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣ ਸਜਾਣਾ ਰੋਵੈ ਹੈ ਸੱਚ ਸਮਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸਵਰਗੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अखंड माया मोहे सह है जमडंड फूटै खापर भीख न पाए बंधन बाध्या आवै जाए बिंद न रख है जति कहाव है माई मागत त्रै लोभाव है निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला एह कर है खिंथा बहु थटुआ झूठो खेल खेल है बहु नटुआ अंतर अग्न चिंता बहु जारे विण कर्मा कैसे उतर सपारे मुंद्रा फटक बनाई कान मुक्त नहीं बदया बिग्यान जहवा इंद्री साध लोभाना पशु पै नहीं मिटे नहीं मिटै निशाना त्रिबिद लोगा त्रिबिद जोगा शब्द विचारै चुक सोगा उज्जल साच सो शब्द होए जोगी जगत विचारे सोए तुझ पह नौ निध तू करणै जोग थाप उथापे करे सो होग जात सत संजम सच सुचीत नानक जोगी त्रे भवन मीत राम कली महला पहला खाट मट देही मन बैरागी सुरत शब्द धुन अंतर जागी वाजै अनहद मेरा मन लीना गुर बचनी सच नाम पतीना प्राणी राम भगत सुख पाईऐ गुरमुख हर हर मीठा लागै हर हर नाम समाईऐ रहाओ माया मोह विवर्ज समाए सतगुर भेटै मेल मिलाए नाम रतन निर्मोलक हीरा तित राता मेरा मन धीरा होमै ममता रोग न लागै राम भगत जम का भाओ पागै जम जंदार न लागै मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार भय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी अंदन जाग रहे लिवलाई जीवन मुक्त गत अंतर पाई लिपत गुफा मह रह निरारे तस्कर पंज शब्द संघारे पर घर जाए ना मन डोलाए सहज निरंतर रहो समाए गुरमुख जाग रहे ओ दूता सद बैरागी तत् परोता जग सूता मर आवै जाए बिन गुर शब्द ना सोझी पाए अनहद शब्द वजै दिन राती अवगत कीगत गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहे निरबानी सुन समाध सहज मन राता तज हाओ लोभा एको जाता गुर चेले अपना मन मान्या नानक दूजा मेट समान्या राम कली महला पहला साहा गणह न करह बीचार साहे ऊपर एक अंकार जस गुर मिलै सोई बिद जानै गुरमत होए ता हुक्म पछाणै झूठ न बोल पाडे सच कहिया होमै जाए शब्द घर लहिया रहाओ गण गण जोतक कांडी कीनी पढ़ै सुनावै तत न चीनी सब स ऊपर गुर शब्द बीचार होर कथनी बदो न सगली चार ना वह तो वह पूज है सैला बिन हर राते मैलो मैला गर्भ निवार मिलै प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचै वाद न बेद बीचारै आप डुबै क्यों पितरा तारै घट घट ब्रह्म चीनै जन कोय सतगुर मिलै ता सोझी होय गणत गणियै सहसा दुख जियै गुर की सरण पवै सुख थीयै कर अपराध सरण हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर सरन न आईए ब्रह्म न पाईए भरम भुलाईए जन्म मर आईए जम दर बादो मर बिकार न हृदय नाम न शब्द अचार एक पादे पंडित मिस्र कहाव है दुबदा राते महल न पाव है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक है बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक है गुरमुख विरली एको जानिया आवन जाना मेट समाणिया जिनकै हृदय एकंकार सर्वगुणी साचा बीचार गुर कै भाणै कर्म कमावै नानक साचे साच समावै राम कली महला पहला हठ निग्रोह कर काया छीजै वर्त तपन कर मन नहीं भीजै राम नाम सर अवरना पूजै गुर सेव मना हर जन संग कीजै जम जंदार जोहे नहीं साकै सरपन डस न सकै हर का रस पीजै रहाओ वाद पड़ै रागी जग भीजै त्रैगुण बिखिया जन्म मरीजै राम नाम बिन दुख सहीजै चाड़स पवन सिंहासन भीजै न्योली कर्म खट कर्म करीजै राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों धीरज तीजै अंतर चोर क्यों साध लहीजै गुरमुख होए काया गढ़ लीजै अंतर मैल तीर्थ परमीजै मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै किरत पया अन्न ना खाहे देही दुख दीजै बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै मनमुख जन्मै जन्म मरीजै
सतगुरु पूछ संगत